0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
4: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
5: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जीपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध

0: आए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधान मंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगगाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
2: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुस जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित 2 रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून तरफ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
6: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी CBI जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेट्रो को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक DGCA ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस बनने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मुंबई, वेलकम टू 107.1 एफएम रेनबो. आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट यम्मी लिशियस इंफरटेनमेंट से भरा हुआ ब्रेकफास्ट शो मस्त मुंबई. और 8:41 दिखा रही है घड़ी, सुबह की ट्रेन पकड़ के आ गई है कौन आपके साथ, आपकी आशना. चलिए चलते हैं, इसी ट्रेन पर सवार होते हैं. मैं बनी रहूँगी आपके साथ पूरे 11 बजे तक. कहीं में जाइए, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ. हम हैं म्यूजिकली यर्स.

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

तो सोचा बातें करेंगे कब, ढेर सारे बढ़िया बढ़िया गाने हम जो है यहाँ पे सुनने वाले हैं, बातें करेंगे और एक और खास चीज़ की कि आज कौन सी ऐसी जो मूवीज़ हैं जिन्होंने कई कई कई साल पहले रिलीज़ होकर अपना एक ऐसा नाम बनाया जो आज तक आपको याद है। हिंट, चलिए इस गाने के उस पार अब तक पहुंचाते हैं कुछ हिंट्स। आप बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, हम हैं म्यूजिकली यॉर्स।

0: सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
0: म्यूजिकली ऑज वेलकम बैक टू 107.1 एफएम रेनबो। मस्त मुंबई सुन रहे हैं आप, आपका एंटरटेनमेंट से भरा यमी ब्रेकफास्ट शो और मंडे ब्लूज को भगाने के लिए कोशिश हो रही है कुछ खूबसूरत कुछ प्यारे गाने इस प्यारे से मौसम में आप तक पहुंचाया जा रहा बारी थोड़ी सी इंफोटेनमेंट की। बिल्कुल, आपने दो गाने सुने बैक टू बैक इस छोटे से ब्रेक से पहले। एक तो आपने सुना फिल्म वनवास से और उसके पहले हम सबका ऑल टाइम फेवरेट गाना आपने सुना मितवा फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना। हालांकि आज 10 अगस्त है और सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ना ना आज का ये दिन नहीं है। बिल्कुल, ये एक दिन बाद आई थी जी 11 अगस्त को ये मूवी रिलीज हुई थी यानी कल ही के दिन जो है, बट बहुत बहुत बहुत बहुत साल पहले की बात है जब ये रिलीज़ हुई थी। 2006 की बात करें, 20 साल हो गए इस मूवी को, 20 साल हो गए इस मूवी के गानों को। तो आप सोचिए अभी भी इतने फ्रेश लगते हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि बस ये इस फिल्म के जितने भी गाने हैं आप बस प्ले कर दीजिए और ऐसे ही सुनते रहें, है ना। लेकिन किंतु और परंतु बात तो होगी दिन विशेष की क्योंकि आज है मंडे। तो आज 10 अगस्त को बहुत साल पहले कई ऐसी फिल्में हैं जो आई थी जिनमें से कुछ फिल्मों के बारे में बातें भी करेंगे और उनके गाने भी आप तक पहुंचाएंगे। 1990 की अगर मैं बात करूं, ये उन दिनों की बात है। तो आज का अर्जुन जिसमें आपको बच्चन साहब और जयाप्रदा नजर आई थी, साथ ही साथ शबाना आजमी और अनिल कपूर स्टारर अम्बा, ये दो फिल्में जो हैं वो आज के दिन रिलीज हुई थी। और उसके बाद चलिए थोड़ा सा और आगे आगे आगे आ जाते हैं। आज से कितने साल पहले आप कीजिए मैथ्स, 2026 चल रहा है, 10 अगस्त 2026 है और 10 अगस्त 2001 में एक फिल्म आई थी जिसने गोवा के लिए जो हमारा प्यार है जो हमारी एक्साइटमेंट है वो इतनी बढ़ा दी थी क्योंकि तीन दोस्त जो हैं वो निकल पड़ते हैं गोवा के रोड ट्रिप के लिए और इतना खूबसूरत इतना प्यारा वो पूरा जो है उन्होंने दिखाया और उसके बाद तो भाई द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं बात कर रही हूँ फिल्म दिल चाहता है कि जहाँ पे आपको नज़र आए थे अक्षय खन्ना सैफ अली खान और आमिर खान। पर क्या आपको पता है कि ये जो आमिर खान वाला कैरेक्टर है जो उनको दिया गया था या उन तक पहुँचा उसके पहले ऋतिक रोशन के पास गया, उसके बाद वो अभिषेक बच्चन के पास गया और फिर वो पहुंचा आमिर खान के पास। और ऐसे ही करते करते करते आमिर खान ने कहा कि नहीं, आकाश जो है वो बनेंगे और अक्षय खन्ना जो है वो बड़े ही प्यार से आराम से जो है वो अग्री कर गए कि ठीक है मैं रेडी हूँ दूसरे वाले किरदार के लिए। और सैफ अली खान तो समीर ही थे। चलिए इसी बात पे सुनते हैं बड़ा बढ़िया सा गाना, उदित नारायण की है आवाज़, आदी है अलका याग्निक ने दिल चाहता है का टना नो पॉइंट्स वगैरह। बने रही है एफएम रेनबो के साथ, हम है म्यूजिकली यॉर्स।

शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन आवाज है, मैंने आपको बताया उदित नारायण और अलका याग्निक की, और ये आवाज आपकी आशना की जो आपके साथ बने रहेगी पूरे 11 बजे तक। 10 बजे तक आप सुनेंगे मस्त मुंबई, ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद नमस्ते भारत में बात होगी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों की जो अगस्त और सितंबर में चल रही हैं, होने वाली हैं, हो रही हैं, और बस मंडे ब्लूज़ को भगाने की जो सारी कोशिशें हैं वो बड़े ज़ोर शोर से यहाँ चली रही हैं। आपके मैसेजेस हम तक पहुँचे हैं, 36227 एंडिंग कोई हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है तो अपना नाम ज़रूर भेजिएगा। फिर पंकज, विजेंद्र, प्रमोद, प्रणव, अजय, यशवंत, दीपा, फिरोज, प्रमोद, वैदेही, रजनीकांत, विश्वास, प्रदीप, सुरेश, सुनील, गुड मॉर्निंग आप सभी को भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है दिल से दिल तक। अब चूंकि हमने सुना ये बढ़िया सा गाना जहाँ पे वो प्यार भरी नोकझोंक और बहस तो कर ही रहे थे कि करना है नहीं करना है, वैसा ही एक और मिलता जुलता गाना ढूंढ के लेके आई हूँ आपके लिए। फिल्म का नाम क्यों हो गया ना, और क्या आपने मैथ्स कर लिया? मैंने आपको बताया था कि कौन से साल में जो है ये रिलीज़ हुई, तो क्या स्पेशल है आज, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इतने साल जो हैं वो लग गए हैं। और गोवा की बातें सुन रहे हैं सुरेश, नहीं अभी हम गोवा नहीं जा रहे हैं, हाँ लेकिन आप हमें सुन सकते हैं पूरे दुनिया भर में, सिर्फ गोवा में ही नहीं, सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे दुनिया भर में हमारे ऐप के जरिए। चलिए सुनते हैं अगला गाना और बने रहते हैं FM Rainbow के साथ, कॉज़ वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए

0: फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

हेमा सरदेसाई की आवाज़। आपने सुना फिल्म चक दे इंडिया से ये गाना। 9:20 दिखा रही है घड़ी। मस्त मुंबई सुन रहे हैं आप, और आप जो हैं कुछ बोलना है, चलिए बोल ही देते हैं, आप तो अपने ही हैं। कहते हैं एक कहावत है जो हमने बचपन से सुनी होगी, आप सब ने सुनी होगी, कि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो कोई डंका बाजे।

डंडा बाजे, ठेंगा बाजे, अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो भाई आप जो हैं, आपके लिए बड़े प्यार से, बड़े आराम से ढूंढ ढूंढ के अच्छे सुंदर गाने, सुंदर फिल्मों के बारे में जानकारियां जो है हम लेके आते हैं, है ना। तो आप वो हमें करने दीजिए, आपको क्या करना है, आपने तो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना है ना। दो गाने जो मैंने आपको सुनाए, जो मैंने पहले भी आपको कहे थे, ज़रूरी नहीं है कि सारे गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ वो उन्हीं फिल्मों से हैं जो आज के दिन रिलीज़ हुई। इतनी फिल्में तो हर एक दिन में रिलीज़ होती भी नहीं है ना, है ना। हमने बात की दिल चाहता है कि जिसको आज 25 साल कंप्लीट हो गए, 10 अगस्त को रिलीज़ हुई थी, और उसी के साथ साथ एक और मज़ेदार सा गाना मैंने आपको जो सुनाया वो 11 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। अब कल मेरी और आपकी मुलाकात तो हो नहीं रही है ना, और ये भी नहीं है कि मैंने कहा कि नहीं ये तो आज ही हुई थी, मैं क्या ही करूँगी ये कह के। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको बस एंजॉय करने हैं गाने, आप रहने दीजिए, बाकी का काम जो है वो हमारे ऊपर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल, ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारी ऐप के जरिए, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए, कभी भी कहीं भी 24/7। दिन विशेष में एक और फिल्म जुड़ी जो है चक दे इंडिया, ये रिलीज़ हुई थी कई कई कई साल पहले, बिल्कुल हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल में ज़्यादातर जो आप देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो है CDs और मूवीज़ जो है रिलीज़ हो रही है। 2007 में रिलीज़ हुई थी, शाहरुख खान इसमें नज़र आए थे और इंडियन वुमेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कोच के किरदार में नज़र आए थे। बहुत खूबसूरत गाने, बहुत ही प्यारी सी फिल्म, बहुत ही मोटिवेटिंग सी जो है ना वो फिल्म। और चूंकि हम दिन की बात कर ही रहे हैं तो आज कुछ और भी है, बड़े मज़ेदार मज़ेदार से दिन है, पता है। मतलब जब आप मंडे सोचो तो आपको लगता है कि वो कहता है ना कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप उनको बस कह दो कि तुम मेरी ज़िंदगी के मंडे हो। अपने आप उन्हें पता चल जाएगा कि आपको वो कितने पसंद नहीं है। बट नहीं, ये तो रही जोक्स की बात, ये जाके कहना नहीं है किसी को। आज के दिन यानी 10 अगस्त के दिन बहुत सारी खास चीज़ें जो हैं या बहुत सारे इंटरेस्टिंग से दिन जो हैं वो मनाए जाते हैं, जिनमें से एक दिन ऐसा है जो है वर्ल्ड लायन डे, जो है शेरों के संरक्षण के लिए बनाया हुआ है, आपको अवेयरनेस जगाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, और ये ग्लोबल इवेंट है जो 10 अगस्त के दिन जो है वो मनाया जाता है। उसके साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तो आज नेशनल लेज़ी डे भी है। सोचा था किसी ने कि मतलब जो लेज़ी हैं, जो आलसी हैं, उनके लिए भी एक दिन मना दिया, कोई नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी जो है फर्स्ट क्लास चल रही है, चलने दीजिए, सबकी चलनी चाहिए। अरिजीत सिंह नीति मोहन की आवाज़ों में आप सुनेंगे फिल्म कलंक से ही अगला गाना, कहीं मचाइए, बने रहिए FM रेनबो के साथ, वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
3: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
2: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
3: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
2: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
3: म्यूजिकली योर्स।
4: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में
5: वेलकम बैक टू 107.1 एफएम रेनबो। आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई, जहाँ पे हम इंफरटेनमेंट से भरी चीज़ें ब्रेकफास्ट आप तक पहुँचाते हैं, या मिलिशियस आपका ब्रेकफास्ट शो, ऑफिस जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो बस ये मज़ेदार से जो डांस नंबर्स थोड़े प्ले हो रहे हैं और भी प्ले होते रहेंगे। डांस करना है बस, ड्राइव करते में नहीं करना है, बाकी कहीं भी कर लीजिए, इट्स ओके, है ना। 9:31 दिखा रही है घड़ी और हम बात कर रहे हैं आज क्या हो रहा है खास और ओवरऑल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो होती हैं। तो अगर घटनाओं की बात कहूँ, ऐतिहासिक एनिवर्सरीज की या ऐतिहासिक सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, तो 1741 में ट्रावनकोर के राजा जो हैं उन्होंने कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, जिसे भारत में डच शासन का अंत हो गया था। ये 1741 की बात है। और साथ ही साथ 1893 में रुडोल्फ डीजल का इंजन पहली बार अपनी ताकत से चला था और इसी वजह से इंटरनेशनल बायोडीजल डे के तौर पर भी ये वाला जो दिन है वो मनाया जाता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड लायन डे और नेशनल लेजी डे तो मैंने आपको बताई। और एक खास चीज़ है, स्काई स्क्रीपर्स, वो जो बड़ी बड़ी ऊँची इमारतें हैं ना, जो हम कहते हैं कि जो आसमान को छू रही हैं, उनकी सराहना के लिए भी एक दिन मना दिया। सोचो आप सोचो, ऐसे भी है भाई। बात यह है कि इतनी खूबसूरत, इतनी बिल्डिंग जो इंजीनियरिंग मैजिक आप कह सकते हैं और आर्किटेक्चरल मैजिक जो आप कह सकते हैं, उनके अप्रिसिएशन के लिए, उनकी सराहना के लिए आज वाला जो दिन है 10 अगस्त का, वो मनाया जाता है। आप कैसे मना सकते हैं भाई? आप देखिए, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देखने चले जाइए अगर आपके आसपास हैं ऐसी। और या फिर बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर अलाउड है तो ही, बिल्कुल वही काम करना है जो अपने को अलाउड है ना। तो इन ऊंची इमारतों में कई जगह पे ऐसे व्यूइंग डेक बने होते हैं या बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर जहाँ छत होती है, जहाँ आपको आपको अलाउड है जाना, तो वहाँ से आप पूरे शहर का जो है वो नज़ारा देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक और दिन है आज, वो क्या है मैं बताऊँगी इस मूवी के उस गाने के पार। इस मूवी का टाइटल ट्रैक है, जिन्होंने ये मूवी देखी है वो जानेंगे कि इस मूवी का ट्रेलर और इस मूवी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इतनी बढ़िया मूवी कहानी, चलिए इस गाने के उस बार आपको बताती हूँ। कहीं मजा ये बने रहे एफएम रेनबो के साथ, वी आर म्यूजिकली योर्स।

जिन्होंने ये फिल्म देखी है वो मेरे साथ एकदम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है मैं उन्हें बता दूं कि इतनी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार बोलूंगी तो कहेंगे अरे ये तो ना कॉमेडी है, ये थ्रिलर है, ये एक थ्रिलर मूवी है। और इसका जब आपने ट्रेलर देखा होगा, इस फिल्म में आपको नज़र आए थे आदर्श गौरव और शनाया कपूर, और ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये करें कि इनकी हम बात क्यों कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन जो है 10 अगस्त वो व्लॉगिंग डे के नाम से भी मनाया जाता है। तो जिन्हें ये नहीं पता है, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम बाद पता चला था, पहले लोग लिखा करते थे, ब्लॉग लिखा करते थे वेबसाइट्स पे, उनके ब्लॉग्स हुआ करते थे जहां आप उनकी मन की बातें या किस्से कहानियां जो है वो आप सुन सकते हैं। फिर लोगों ने वीडियो के जरिए वो सारी चीज़ें जो हैं बांटनी शुरू करी और वो बन गया व्लॉगिंग। तो आज का दिन जो है वो ये सारे व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स इनको डेडिकेटेड है, और सोशल मीडिया का प्रेजेंस तो है ही चारों तरफ हमारे यहाँ। तो आज के दिन आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर ये बनना है, अगर आपकी इच्छा है तो आप बन के जो है इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं वीडियो ब्लॉग्स के ज़रिए, या आपके पसंदीदा कोई लोग हैं उनकी व्लॉग्स आप देखिए, कुछ अच्छा उनसे सीखिए और फिर अपने लाइफ में जो है उसे अप्लाई कीजिए। लेकिन किंतु और परंतु आपने क्या करना है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, है ना, वो तो आप ही जाने। हम बात करेंगे कि इस फिल्म में क्या हुआ था। 2018 में एक फिल्म आई थी, थाई फिल्म थी वो, और ये एक सर्वाइवल थ्रिलर है, और उस फिल्म के ऊपर थोड़ी सी अडेप्टेशन लेके इस फिल्म को बनाया गया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं जो हूँ वो सस्पेंस आपके लिए नहीं खोलने वाली हूँ, बट ज़रूर देखिएगा, मज़ेदार सी फिल्म है। बिजॉय नाम्बियार की डायरेक्शन है, और इसके गाने तो हैं ऐसे क्योंकि बीच में ये रैप मैंने आपको सुनाया सुबह सुबह जगाने के हिसाब से। बट थ्रिलर अगर आपको पसंद है तो देखिएगा ज़रूर। और एक चीज़ जो हमने सीखी इस फिल्म के ट्रेलर से वो ये थी कि कभी भी ट्रेलर देख के डिसाइड नहीं करना कि हमने ये फिल्म देखनी ही नहीं है। जब तक आप देखेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितनी अच्छी या कितनी नॉट सो अच्छी है। इसी बात पे आगे बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आप तक पहुंचने वाले हैं। ठीक 10 बजे जो है आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद सोचिए क्या है, क्या है हमारे पास, बताती हूँ इस गाने के उस पार। कहीं मत जाइए, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, हम हैं म्यूजिकली यर्स।

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज़ और ये आवाज़ आपकी आशना की, जो आपके साथ बने रहेगी पूरे 11 बजे तक। 9:44 मिनट दिखा रही है घड़ी। हम रुकने वाले हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक और ऐसा गाना जो आपने फिल्म तू या मैं में सुना, लेकिन वो है उस फिल्म का नहीं, वो है आज से कई साल पहले आई फिल्म यारा दिलदारा के। और ये वाला गाना आपने इतनी बार उस फिल्म में सुना है कि आप जरूर वो जो ओरिजिनल ट्रैक है उस पर पहुंच ही गए होंगे कि भाई हमें तो अभी ये सुनना ही है। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आप सुनेंगे अगला गाना। लेकिन किंतु परंतु एक छोटा सा ब्रेक, आपको कहीं नहीं जाना। आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल, जिसका प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज की डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं प्रसार भारती के न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए कभी भी कहीं भी 24/7। वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
3: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
4: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
3: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
4: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना।

1942 लव स्टोरी से कुमार सानू की खूबसूरत आवाज में आपने सुना ये प्यारा सा गाना। और बस घड़ी ने कहा कि वक्त हो गया है कि हम मस्त मुंबई को यहीं समेटें। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद नमस्ते भारत में बातें होंगी कुछ ऐसी खूबसूरत जगहों की जो हमारे ही प्रदेश में है, महाराष्ट्र में ही है, आसपास ही यहीं घूमेंगे हम, यहीं FM रेनबो के स्टूडियो से। आपको कहीं नहीं जाना, हमारे साथ बने रहना है। और दिन विशेष में व्लॉगिंग डे को यहीं निपटाते हुए मैं आपको सुना रही हूँ एक बड़ा प्यारा सा गाना। पेपॉन की है आवाज़। हाल ही में उनका एक कॉन्सर्ट लाइव सुनने का मौका मिला, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस। पर व्लॉगिंग से ही याद आया कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन्हें सुनने की बजाय बस वीडियो बना रहे हैं, खुद की वीडियो बना रहे हैं कि हम इस कॉन्सर्ट में आए हैं। तो एक आधा दो गाने तक ठीक है, उसके बाद फ़ोन साइड में रख लीजिए, व्लॉगिंग तो होती ही रहेगी, पर वो जो लाइव एक्सपीरियंस है उसका लुत्फ ज़रूर उठाइए। इसी बात पर दम लगा के हैशा से खूबसूरत सा गाना, ओनली ऑन FM रेनबो, म्यूजिकली यॉर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। सुबह के 10 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के कुछ प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल भारत छोड़ो आंदोलन के 84 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री फडणवीस ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की देशभक्ति और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। समाचार में आगे, ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों के समूह के 15 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों ने कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका शैलाश्रय का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडलों ने हजारों साल पुराने शिल चित्रों को देखा और प्रागैतिहासिक मानव जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। और समाचार के अंत में खेल जगत से, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारतोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारतोलक महाराजन अरुमग ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। महाराजन ने 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। इसी के साथ समाचार समाप्त। प्रोग्राम नमस्ते भारत के लिए बने रहिए FM रेनबो के साथ।

10:03 मैंने दिखा रही है घड़ी. नमस्ते भारत जो है शुरू हो गया है. 107.1 FM रेनबो ट्यून इन किया हुआ है आपने. और इस धुन को प्ले करने का बस एक ही कारण था कि इस पूरे एक घंटे में आप जानते हैं कि आज सोमवार की सुबह है. मंडे मॉर्निंग, मंडे ब्लूज को भगाने के लिए नमस्ते भारत में हम बात करते हैं आज भारत की विविधता की, त्योहारों की, मेलों की, अलग अलग रिवाजों की और इतनी सारी खूबसूरत चीज़ों की जो हाल फिलहाल में जो है वो चल रहे होते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी जगहों की जो हमारे आसपास ही हैं, महाराष्ट्र में ही हैं, और उसका हिंट देने के लिए चलिए ठीक है मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, उसके उस पार करेंगे ढेर सारी बातें. कहीं मत जाइए, बने रहिए FM रेनबो के साथ. हम हैं म्यूजिकली योर्स.

0: हंसराज रघुवंशी की खूबसूरत सी आवाज़ में आपने सुना फिल्म ओ माई गॉड 2 से ये बड़ा ही प्यारा सा गाना, और ये आवाज़ आपकी आशना की जो आपके साथ बनी रहेगी पूरे कितने बजे तक, पूरे 11 बजे तक। 10:13:20 दिखा रही है घड़ी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल, नमस्ते भारत प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है, और यहाँ बात होती है मंडे के दिन है प्रीत, जहाँ की रीत सदा भारत की विविधता की, भारत के त्योहारों की, अलग अलग जो मेले लगे हैं, जो रिवाज हैं, जो तीज है, तो इन सब के बीच में चूंकि हम अगस्त के महीने में हैं, 10 अगस्त की आज तारीख है, तो अगस्त का ये जो महीना है ये मानसून और अध्यात्म का एक अद्भुत सा संगम है, बहुत ही खूबसूरत सा ये जो मेल है, चारों ओर बम बम भोले की गूंज है। और अगस्त का महीना हिंदू कैलेंडर के सावन या भाद्रपद मास में आता है, तो सावन के सोमवार के, सावन के मंडे की आप सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। और ये समय जैसे ही मैंने आपको कहा भगवान शिव की भक्ति में जो है सब लीन होते हैं, और देवघर के बैद्यनाथ धाम से लेकर काशी विश्वनाथ तक चारों तरफ जो है पूरा देश जो है वो शिवमय हो जाता है। और चूंकि मैंने कहा था कि हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम आस पास ही रहने वाले हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं उनमें से 5 जो हैं वो हमारे ही प्रदेश में हैं, मतलब जो मुंबई से मुझे सुन रहे हैं वो हमारे ही महाराष्ट्र में हैं। तो कौन से हैं, कहाँ हैं, कैसे आप पहुंच सकते हैं, उन सब की बातें तो हम करेंगे, लेकिन किंतु और परंतु रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से भी पहले उन सभी को एक बार गुड मॉर्निंग की जाए जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं 9 बजे के बाद। छत्तीसगढ़ से कभी रेडियो श्रोता संघ हैं विजेंद्र घटोल, सुनील पाठक, साथ ही साथ अहमदाबाद से कांशा, मनोज सिन्हा, पंकज, महेश भाटकर, अंकित, दत्तात्रेय आदित, बाबा, रजनीकांत, श्रीधर, हितेंद्र, इब्राहिम, भारती और दुर्गेश, थैंक यू सो मच आप सभी का। अरविंद, शुभ लक्ष्मी, श्रेय, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद, और 11 बजे तक बने रहना है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आ रहे हैं खूबसूरत गाने और ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें, कहीं मत जाइए, बने रहिए FM रेनबो के साथ, हम हैं म्यूजिकली योर्स,
1: आकाशवाणी FM रेनबो।
2: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

चेन्नई एक्सप्रेस से आपने सुना तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, और उसके पहले मैंने आपको सुनाया गाना सचिन जिगर और आदित्य खाड़ी की आवाज़ों में फिल्म परम सुंदरी से। दो गाने बैक टू बैक आपने सुने और इनका कनेक्शन बड़ा प्यारा सा कनेक्शन है, क्योंकि दोनों जो फिल्में, हालांकि चेन्नई एक्सप्रेस के नाम में चेन्नई है, लेकिन इसकी मेजॉरिटी जो शूटिंग है वो मुन्नार में हुई। वो खूबसूरत चाय के जो बगान हैं उनमें आपने ये प्यारे प्यारे गाने सुने, देखे आपने, मैं आप कह सकती हूँ, जो फिल्म आई जो एक और वैसा ही प्यारा सा गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और केरला की बात हमने इसलिए की क्योंकि कई सारी जो हिंदी फिल्में हैं, फिर चाहे वो गुरु हो, रावण हो, बागी, दिल से, निशब्द, चेन्नई एक्सप्रेस, मद्रास कैफे, कारवां, ये केरला के काफ़ी सारे सीनिक लोकेशंस पे वो शूट हुई है। और चूंकि हम बात कर रहे हैं भारत की विविधता में एकता की, तो एक त्यौहार जो बड़े धूमधाम से जोरों शोरों से अगस्त में मनाया जाता है वो है ओणम, जो इस साल है 26 अगस्त को। अगस्त की बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग है, जो खास स्थान है, उनके बारे में भी, और साथ ही साथ 15 अगस्त को तो हम सब जानते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और इसी के साथ आ रही है हरियाली तीज, जो हमारे देश के कई सारे जो इलाके हैं वहाँ पे जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और बातें चलती रहेंगी, बिल्कुल चलती रहेंगी, पर उसके पहले सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना। आप बने रहिए FM Rainbow के साथ, हम हैं म्यूजिकली योर्स।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

गुलजार साहब की कलम से निकले बोल, लता जी की खूबसूरत आवाज़, यार रहमान की कॉम्पोजिशन, फिल्म दिल से इसे आपने सुना जिया जले। ये फिल्म भी शूट की गई थी केरला में। हम बात कर रहे हैं पूरे देश भर में जो त्यौहार मनाए जाने वाले हैं, जो मेले लगने वाले हैं, उसके बारे में। 15 अगस्त की हमने बात की, साथ ही साथ 17 अगस्त को नागपंचमी जो है वो मनाई जाएगी पूरे देश भर में, 26 अगस्त को ओणम और 28 अगस्त को रक्षाबंधन। ऐसे कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार जो हैं इस पूरे महीने में थोड़े दिनों में जो है वो आ रहे, और इसी महीने में कृष्ण जन्माष्टमी भी है। और मैं बात कर रही हूँ ज्योतिर्लिंग की, जो महाराष्ट्र में है। वैसे तो जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 3 ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र में है, जो है भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और

कृष्णेश्वर जो आपको पुणे के पास और नाशिक और औरंगाबाद ये अलग अलग जगहों पे तीन, भीमा शंकर जो है वो पुणे के पास हैं, त्र्यंबकेश्वर नाशिक के पास हैं और कृष्णेश्वर जो हैं वो छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद के पास जो हैं वो वहाँ पे हैं। उनके साथ साथ दो और ऐसे पवित्र स्थान हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, हालांकि वो उन 12 ज्योतिर्लिंग की जो लिस्ट है उसमें नहीं आते हैं, और वो हैं परली बैजनाथ और औधा नागनाथ। ये आपको बीड जिला और हिंगोली जिला इनके आसपास मिलेंगे। तो महाराष्ट्र में ही अगर आप हैं और मुझे वहाँ से सुन रहे हैं, मुंबई से सुन रहे हैं, मुंबई के आसपास से सुन रहे हैं, तो ट्रेन, बस, रोड, कार के ज़रिए आप इन सभी जगहों पे इस सावन के पावन महीने में जा सकते हैं। और चारों तरफ ऐसी हरियाली हरियाली है, खूबसूरती है, साथ ही साथ भक्तिमय होने के लिए इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है, है ना। तो बोरिया बिस्तरा उठाइए, बैग उठाइए और चल दीजिए। फिलहाल मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, मैं आपको कहूँ या धमाकेदार वाला गाना। मिथुन की है आवाज़, सादिया है मोहित चौहान ने, सुखविंदर सिंह ने, फिल्म शिवाय का टाइटल ट्रैक, ओनली ऑन एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, वो स्टेशन जिसे न सिर्फ लोग सुनते हैं बल्कि उसी की सुनते हैं दिल से दिल तक।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

लता मंगेशकर, उदित नारायण और गुरदास मान की खूबसूरत आवाज़ों में आपने सुना फिल्म वीर ज़ारा से ऐसा देश है मेरा। और इस गाने से पूरा जो पूरा हमारा शो है ना, उसको हमने समराइज़

0: तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको बस बने रहना है हमारे साथ में, क्योंकि हम जो है वो जुड़े हैं दिल से दिल तक। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आसपास वालों को खुश रखिए। और जैसे कि इस पूरे प्रोग्राम में हमने बात की है, अगस्त जो महीना है खूबसूरती का है, प्यार भरा है, अध्यात्म का है, बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो जहाँ आपका मन आपको कहे कि चलें, वहाँ ले चलते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की टाइटल ट्रैक से हम जो करेंगे इस प्रोग्राम का अंत। बने रहिए FM रेनबो के साथ, Musically Yours।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
2: Musically Yours।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। समय हो चुका है समाचारों का और समाचार इस घंटे के इस प्रकार हैं। लोकसभा की कार्यवाही में आज चार विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनिमयम संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। मुख्य समाचारों में आगे, मुंबई को जलापूर्ति करने वाली 7 प्रमुख झीलों में उनके जल भंडारण क्षमता का 88.70% पानी जमा हो चुका है। विहार झील 100% भर चुकी है, जबकि मोड़क सागर, तुलसी और तानसा में भी जल भंडार 98% से अधिक है। मुख्य समाचारों के अंत में, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में अगले 3-4 घंटे तक आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र के अन्य जिलों में भी मौसम साफ बना रहेगा या हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM पर और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 FM रेनबो, और आप हमें सुन सकते हैं 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। दोस्तों, कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन कुछ लोग इसे सच साबित कर ही देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेंगलुरु की महज 2 साल की नन्ही अकीरा ने 7 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, तो शायद आपको भी यकीन ना हो। मुझे भी पहले यही लगा था कि कोई बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात होगी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना तो महसूस हुआ कि असंभव की सीमाएं अक्सर हमारी सोच बनाती है, हमारी क्षमता नहीं। आज ब्रेक फ्री में बात उसी सोच की जो हमें अपनी बनाई हुई दीवारों से बाहर निकाल सकती है, जो हमें सिखाती है कि भाई इन दीवारों से बाहर निकलना है। तो बने रहिए अकीरा की कुछ बातें और साथ ही साथ कि जीवन की इन दीवारों की, जिनका हम आम तौर पर अमूमन बहुत बात करते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर उसको करने की बात आ जाए तो करना कैसा है, कैसे है, ये जरूरी है ना। तो बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। दोस्तों, एक जिंदगी है ना, तो एक जिंदगी में जितनी ख्वाहिशें हैं सभी को पूरा करो एक एक करके, है ना। सुनते रहो, बने रहो 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। मैं हूं वैशाली, आप सभी के साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक।

감사합니다.

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है और बातें हो रही है कि किस तरह जिंदगी में जरूरी है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर ही ले भाई, कर ही ले, क्योंकि एक जिंदगी है। यानी कि हालांकि ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम कई जन्म लेते हो, लेकिन ये बात है कि याद तो हमें यही जिंदगी होती है ना, इस जिंदगानी में तो वही उसे खुल के जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, मैंने आपको नन्ही अकीरा के बारे में बताया और ये बोलूंगी आपसे कि अकीरा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उसका वो निडर मन है जिसे अभी तक मैं नहीं कर सकती ये कहना आया ही नहीं है। बचपन की यही खूबसूरती होती है, तभी डर ये शब्द ठीक से पता ही नहीं होता, वहां सिर्फ कोशिश होती है और जिज्ञासा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अनुभवों के साथ कई बार डर मन में घर करने लगता है, फिर हम अपने ही मन में सीमाएं खींच लेते हैं, शायद बंधनों को तोड़ने की शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, और जब हम उन अदृश्य सीमाओं को पहचान कर उन्हें मिटाने का साहस करते हैं, तब भाई हम कह सकते हैं कि हम वाकई जिंदगी जीने लगे हैं। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई चीज हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, हासिल होगी या नहीं होगी, और वहां हम पहुंचेंगे या नहीं, ये अक्सर पहली बात, पहला सवाल या उलझन नहीं होते हैं। पहली बात ये होती है कि क्या हमने वो पहला कदम उठाया, क्या फिर उसके बाद हमने जो दूसरा लॉजिकल कदम है वो उठाया, और क्या हम ये चीज़ें कर रहे हैं। अक्सर है ना, जो हम पाना चाहते हैं उसको हमें बहुत ही बड़ा करके नहीं देखना चाहिए, हमें उसे छोटे छोटे कदमों में जो है जीना चाहिए और एक एक कदम उठाते हुए उस चीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, एकदम से जो है वो बनी बनाई चीज़ तो मिलेगी नहीं, हर चीज़ को जो है हमें जोड़ना है, बांधना है, और फिर जो है एक एक कदम मिलाकर एक एक बूंद से सागर बनता है ना। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो एक एक एक एक वाला प्रयास हो, है ना। वो तो नामुमकिन नहीं है और उसमें तो डरने की भी बात नहीं है, है ना। अगर समुंदर का सोचोगे तो डर बिल्कुल लगेगा, लेकिन एक एक बूंद तो बिल्कुल मुमकिन है ना। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है और एक क्विक कमर्शियल ब्रेक लेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप सभी को बस यही बताना चाहती हूँ कि मैंने शुरुआत की आपको ये बताते हुए कि एक नन्ही बच्ची अकीरा ने जो बेंगलुरु में रहती है उसने किस प्रकार, क्योंकि उसे डर ये शब्द ही नहीं पता, महज 2 साल की उम्र में उसने 7 रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए और देखिए जिनमें से 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और 3 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और ये खिताब सारे शामिल है इस लिस्ट में। और देखिए वो किक स्कूटर चलाने में महारत हासिल है उसे और साथ ही साथ इसने उन्होंने सिर्फ यानी कि उस बच्ची ने मैं कहूँगी सिर्फ 1 वर्ष और 2.5 महीने की उम्र में जो है अपना ये जलवा दिखाया स्पोर्ट्स की दुनिया में और काफी कुछ किया है। अकीरा के बारे में और बातें आपको बताऊंगी कुछ देर बाद और बात करेंगे डर के बारे में भी कि क्या फर्क होता है कि जब आपको डर के बारे में पता ही नहीं है और भाई आप डर से परिचित है और इस वजह से पहला कदम तक नहीं उठा पाते। तो ये सारी बातें चलेंगी ब्रेक फ्री में इस घंटे 107.1 FM रेनबो पर।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, ब्रेक फ्री चल रहा है और गाने भी बिल्कुल मैं आपको वैसे ही सुनवा रही हूँ जो भाई आपको फील करवाए पूरी तरह से कि जो आपका सपना है भले ही आपको जैसा भी लगे उसे हासिल करना कितना जरूरी है। और बात ये भी है ना दोस्तों कि हम डर रहे हैं तो एक कदम भी नहीं उठा रहे और कहीं और किसी और को डर पता ही नहीं क्या है। तो उस इंसान ने देखिए, उस बच्ची ने, इंसान तो है ही हम सब, लेकिन उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने जो है क्या रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। दोस्तों हमारे आसपास ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिन्होंने किसी दुर्घटना में अपने हाथ पैर या शरीर का कोई हिस्सा खो दिया लेकिन अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया बल्कि अपनी मेहनत से नए कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका आत्मविश्वास होता है, उसका मन। और जब इरादे मजबूत होते हैं ना उसके, तो मुश्किलें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बन जाती हैं। यही है असली आजादी। हार मान लेना ये जो होती है ना, सोच से, इस सोच से कि भाई हार मान लिया है, हार मान लेना है, सोच से असली आजादी यही होती है। जब मुश्किलें आती है और भाई मुश्किलों से ही मंजिल हम बना लेते हैं अपने लिए। तो दोस्तों सारी चीजें ना अगर हम बहुत ज्यादा डीपली सोचे तो हम ये पाते हैं कि मानसिक होती हैं और कहीं ना कहीं जो है हमें अपने मन को मनाना ही पड़ता है। तो दोस्तों वापस आते हुए अकीरा की बात पर, जैसे मैंने बताया आपको कि महज बिल्कुल एक वर्ष और ढाई महीने की उम्र में जो है उसने कितना कुछ शुरू कर दिया था अपने जीवन में। और इसने जो है किक स्कूटर चलाना उस समय शुरू किया और फिर बेहतरीन शारीरिक संतुलन और बाकी सारी चीज़ों को दिखाते हुए, अपने साहस को दिखाते हुए, तो ये इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसने अपना नाम दर्ज कर लिया। देखिए ये निकलता कहां से है ये भी जानना जरूरी है। अब अकीरा की ऐसी सोच, इतना निडर उसका पूरा स्टांस, ये आया कहां से? ये इसलिए आया क्योंकि उसके माता पिता खुद एथलीट्स हैं, जहां उसकी माँ एक क्रिकेटर है और पिता फुटबॉलर है। और इसी वजह से उसने बचपन ही से खेल और एक्टिविटीज के लिए एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल पाया घर ही पर। और डेफिनेटली वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, वर्सेटाइल प्रोडिजी है। और हमें लगता है कि भाई प्रोडिजीज वगैरह जो है दूसरों के घरों में बनते, हमारे घर में कहाँ से बनेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सारा जो होता है ये हमारा भी तो समर्पण और डेडिकेशन होता है। वो इतनी नन्ही सी बच्ची, अगर उसको कुछ भी करना है तो वहां पर किसी ना किसी घर के सदस्य का होना भी तो जरूरी है। तो यहीं पर बात आती है क्वालिटी टाइम देना, जिससे फर्क पड़े हमारे जीवन में, हमारे अपनों के जीवन में। और भाई सपनों की शुरुआत, वो पहल यहीं से होती है जब हमारा कोई अपना हमारे लिए कुछ बलिदान दे, त्याग करे या एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले, है ना? आप क्या सोचते हैं बताइए हमें। बने रहे, सुनते रहे और इस चैंपियन के नाम एक चैंपियन वाला गाना 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर. मैं हूँ वैशाली और बातें हम कर रहे थे नन्ही अकीरा की और उन लोगों की भाई जो एक पहला कदम तक नहीं उठाते, पहले ही से या तो डर जाते हैं या तो बहुत ही जो लार्जर पिक्चर होता है ना, जो एंड है, जो अचीव करना है, उसे पहले ही उसके बारे में सोच कर डर जाते हैं. क्योंकि आप समुंदर के बारे में सोचेंगे तो डर लगेगा ही, लेकिन बूंद बूंद के बारे में सोचिए तो कुछ नहीं लगेगा. तो भाई दोस्तों, जरा सोचिए कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने डर पर जीत हासिल की, और दूसरी ओर वो मासूम बच्ची है जिसने शायद अभी डर को जाना ही नहीं. क्योंकि मैंने आपसे ये भी तो कहा था ना कि वो लोग जिनके साथ हादसे हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसके बावजूद वो डर नहीं मानते, दिल में बिठाकर नहीं रखते. तो देखिए, दो मैंने आपको यहाँ पर सीन बताए, एक जिसमें वाकई लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी सी आ गई हैं, मुसीबतें मुश्किलें आ गई हैं, लेकिन उसका सामना निडरता से करते हुए उन मुश्किलों से आपने आप बाहर निकल गए उनको सीढ़ियाँ बना के, और दूसरी ओर ये बच्ची जिसे पता ही नहीं डर क्या है. तो देखिए कितना दिलचस्प फर्क है ये, है ना. एक को डर से लड़कर आगे बढ़ना पड़ा और दूसरे के मन में डर ने अभी दस्तक ही नहीं दी. शायद हम सबके भीतर भी कभी वही निडर बच्चा था जो गिरकर भी मुस्कुराते हुए फिर खड़ा हो जाता था. सफलता यानी उसी खोए हुए साहस को फिर से खोज लेने का नाम है. तो दोस्तों, ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत कुछ खोने की वजह से हम उस डर को भी खो देते हैं, और ऐसा भी होता है कि वाकई हम बिना वजह डरते नहीं. छोटी मोटी चीज़ों से हम रुकते नहीं, थमते नहीं, आगे बढ़ते हैं चाहे जो भी हो जाए. हम जो हैं जानते नहीं कि भाई वो डर है क्या. तो भाई अनुभव का अभाव भी कह सकते हैं आप, डर ना होना. ये भी कह सकते हैं कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है जीवन में, और ये भी कह सकते हैं कि भाई मुश्किलों का सामना करते करते वो डर ही छू मंतर हो गया. लेकिन दोस्तों, जो भी बात है, फर्क तो है सभी में, लेकिन बात इतनी है कि मन जो है यही यहाँ पर काम आता है. तो मन ही है जिसे मजबूत करना है.

107.1 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। ब्रेक फ्री इस शो में बस एक आखिरी गाना आप सभी के लिए और उसके बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। और फिर 12 बजे के बाद यानी 12:02 से शुरू होगा म्यूजिक कैफे। दोस्तों आज इतनी बातें मैंने आप सभी के साथ साझा की निडर होने के बारे में, डर का बिल्कुल होना ही नहीं इसके बारे में, और फिर मुश्किलों से उभर कर अपनी मंजिल बनाने के, तय करने के बारे में, और ये सारी चीज़ें जो है किस तरह हमारे मन से जुड़ी हुई हैं इस पर आज बातें की मैंने। और आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप क्या चुनेंगे, डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत या फिर ऐसा मन जिसने डर की परिभाषा ही कभी सीखी ना हो। दोस्तों आपकी सोच किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है, इसे याद रखिएगा। जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान वही भरता है जो अपने मन के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। हाँ ये सुनने में आसान है मुझे पता है, करना वाकई मुश्किल है, लेकिन जो कर गुजरता है ना दुनिया उसी को सिकंदर कहती है, और वो होता भी है। जो अपने मन के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है, हर दिन हर पल आजाद रहता है, अपने मन से पूछता है कि अगर डर से मुक्त होना है, आजाद होना है तो क्या करना है, वो आप जरूर कीजिए। एकदम से नहीं हो पाएगा, पर धीरे धीरे करने से कुछ भी असंभव नहीं। बस किसी के दुख दर्द इन चीजों के कारण जो है वो रुक जाता है, किसी को दुख या दर्द मिल जाता है और भाई कारण बने बिना आपको जो है ब्रेक फ्री करना है, यानी इनको कारण नहीं बनाना, बस ये सोचना है कि ब्रेक फ्री कैसे करना है, प्रॉब्लम है उससे निकलना कैसे है, बस आप यही सोचते रहो। ये मत सोचो कि निडर बनना है, साहसी बनना है, ये करना है वो करना है, बस यही सोचना है। दोस्तों हम सभी जानते हैं, हम सभी करते भी हैं, कि बस एक रास्ता है जो इन मुश्किलों को पार हमें कराते हुए बाहर ले जाता है, तो बस उस रास्ते पर चलना है ना। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 12:33 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। लोकसभा को विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इनमें नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी शामिल था। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी एन के प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में कथित अनियमितताओं, विशेष रूप से जेएसएससी CGL परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर जांच शुरू की है। अधिकारियों ने आज बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने राज्य पुलिस की CID द्वारा FIR और कुछ अन्य शिकायतों का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की है। राज्य में छात्र पिछले 16 दिनों से भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं में गड़बड़ी की CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य समाचारों में आगे, सरकारी क्रय विक्रय के प्लेटफॉर्म GEM पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम GEM पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। मुख्य समाचारों के अंत में, मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। आज जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक की भी संभावना जताई है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर 107.1 FM रेनबो आकाशवाणी मुंबई केंद्र से। FM रेनबो

ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अक्सर मन करता है कि कभी तो ऐसा समय आए, ऐसा दिन आए जब हमें बिल्कुल ना सोचना पड़े, ना घर के काम हो, ना ऑफिस या बिजनेस का टेंशन, और दुनिया में क्या क्या चल रहा है इसका सरदर्द, और ना ही सोशल मीडिया पर कौन किससे लड़ रहा है, ये सारी चीजें जो है ये सुननी देखनी पड़े। पर ऐसा शायद ही हो पाता है ना। हमेशा ही से हम जिम्मेदारियों का बोझ ढोते आए हैं, और हमारे बचपन में अक्सर घर वाले भी हमारे बड़े होने का इंतजार करते ताकि हम जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाए। तो बात ऐसी है कि धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि इस धरती पर हमने जन्म ही जिम्मेदारियां उठाने के लिए लिया है। खैर, जिम्मेदारियां तो अपनी जगह रहेंगी, लेकिन आज क्यों ना कुछ देर उन पर DND लगा देते हैं, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर हंसी लिया जाए। अब आज का विषय क्या है इसका अंदाजा आपको गाने सुनकर जरूर लगेगा, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको बने रहना होगा, सुनते रहना पड़ेगा 107.1 FM रेनबो, क्योंकि भाई आज कुछ ऐसा करने वाले हैं कि अपने मन पर बोर्ड लगाने वाले हैं DND का, दिमाग पर भी, और कहने वाले हैं खुद से कि भाई थोड़ी देर का सुकून हमें दे दो, और आप नहीं दे रहे हमारे मन हमारे दिमाग तो हम ये सुकून खुद ही हासिल कर लेंगे, है ना। तो भाई शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत से। सुबह सुबह जो है दोस्तों, होता ये है कि लाइन लगती है कि पहले कौन ना आएगा, पहले बाथरूम कौन जाएगा, और पहले पहले जो है कौन तैयार होकर भागेगा, और नाश्ता किसे मिलना चाहिए, ये होता है ना आप सभी के साथ। तो चलो उसी भाग दौड़ के नाम है ये गाना, दिन की शुरुआत वाला।

भाई लाइफ में कुछ नियम तोड़ने चाहिए और कुछ बिल्कुल नहीं, और नियम होते हैं इसलिए कि हमारी जिंदगी और बाकी सारी चीजें सही रहे। तो छोटे मोटे कोई चीजें होती है जो ऐसे ही होते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी तो भाई नियम तोड़ने नहीं चाहिए, उससे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन खैर अभी तो बात ऐसी है कि हमने अपने दिमाग पर और दिल पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाना है और बस चिल करना और इंजॉय करना है इन गानों को। तो दोस्तों आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यूं कोई विषय नहीं है पर फिर भी है, जो है मनोरंजन और बिल्कुल दिल खोल के जीना, मस्ती करना, गानों को एंजॉय करना और बस अपने दिलो दिमाग से कहना कि कुछ देर के लिए ही सही भाई, मत परेशान करो हमें। तो दोस्तों हम जब एंटरटेन होते हैं तब समय, दर्द, दुख, तकलीफ, टेंशन ये सब ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो बस यही कहूंगी कि कुछ समय के लिए अपना वो धुआं छोड़ता हुआ दिमाग रूपी इंजन पॉज कर लीजिए, सिट बैक, रिलैक्स और बस 107.1 FM रेनबो के गानों संग गुनगुनाइए, बने रहिए और बाकी सब कुछ भूल जाइए। अरे पर गैस पर कुछ छोड़कर नहीं ना आ गए हो? ओहो ताला लगा लिया है ना? अरे वो सामान लाना था, ऑर्डर किया ना? देखो देखो देखो देखो देखो फिर से आपका इंजन चल पड़ा है, तो उसे रोक लीजिए और सुनते रहिए, सुनिए ये गीत दिल से दिल तक 107.1 FM रेनबो पर।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: म्यूजिक कैफे चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। मैं हूँ वैशाली और आप सभी को थोड़ा सा डिस्ट्रेस करा रही हूँ। हाँ, गाने ऐसे सुनने के बाद ना कहीं ना कहीं आप जो भी कुछ कर रहे हो वो बस दिमाग से निकल ही जाता है, यानी आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस गाने सुनना है। और उसके बाद क्या होता है कि ये सारी जो तमाम चीज़ें, उलझने, तकलीफें, दर्द, हाय हाय हाय हाय, सारा कुछ एकदम से गायब और उड़न छू हो जाता है ना। तो दोस्तों, जब तक ना पूछा जाए, जब तक ना मांगा जाए, आजकल के ट्रेंड्स के बिल्कुल विरुद्ध। अब देखिए मैं क्या कह रही हूँ, जब तक ना पूछा जाए, जब तक ना मांगा जाए, और बिल्कुल आजकल के ट्रेंड्स के विपरीत विरुद्ध, हमें ना राय देने की ज़रूरत है और ना ही जवाब देना आवश्यक है। वो तो वैसे ही लाखों लोग कर ही रहे हैं, और अब देखिए उस भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है जो वाकई मायने रखता है, हम वो काम करें भाई, और वो है कि बिल्कुल चिल करें और अपना काम जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, उस पर ध्यान दें। हमारा जहाँ सुना जाए वहाँ हम अपना ज्ञान दें, या कोई परामर्श अगर मांगता है तो ही फिर दे, या फिर जब पूछा जाए तभी हम जवाब दें। तो बात है ना सीधी है, स्वाद में थोड़ी तेज लग सकती है आपको, पर है तो पतेगी। देखिए दोस्तों, याद रखिए, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बहस में शामिल होना ज़रूरी नहीं, और हर समय गंभीर रहना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है एक प्यारा सा गाना सुन लेना और एंजॉय करना। तो चलिए ये गाना सुनते हैं और भाई याद करते हैं अमर अकबर एंथनी को। जी हाँ जनाब, बने रहे, सुनते रहे 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है, और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
1: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
1: तो राजेश जी, आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर,
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी, विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
1: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का, और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
2: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
1: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
1: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तक

0: लोगों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
1: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: अठारह भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
4: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड।
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
5: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ सतहत्तर ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
6: सुना तुमने?
7: क्या?
6: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
7: हैं?
6: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
7: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
6: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली के मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
7: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह

0: उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
1: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो अब हमार कुंवर सिंह का करी।
2: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
3: ऐसा चाहिए कि जिसके बारे में जान सब
1: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
4: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
5: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
4: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी हुजूर,
4: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिलें।
1: जी हुजूर।
4: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
6: चलो चलो चलो आरा चलो चलो चलो चलो।
7: 26 जुलाई 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी, चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
4: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं, इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है, शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
6: अमर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
7: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा, सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
8: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है, उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं रहे। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की।
7: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन

0: इनके भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
2: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
1: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
3: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
4: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
2: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
0: ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अदरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया। कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
2: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये उपहार।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार। गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ, आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
0: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओ माय गॉड, देखो शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: यस सर।
0: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। अभी आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो पर कार्यक्रम म्यूजिक कैफे।

ठीक 1 बजे आप सुन सकेंगे समाचार, दोपहर के समाचार छत्रपति संभाजी नगर केंद्र से। सुनते रहें, बने रहें 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। आपके दिल के जज्बात आपके मनपसंद गानों के साथ हिट एंड हॉट में चलेंगे लेकर हाथों में हाथ 107.1 एफएम रेनबो पर म्यूजिकली योर्स। आप सभी का हिट एंड हॉट में स्वागत है और आप सभी के मैसेजेस के लिए दिल से धन्यवाद। और मेरी बात हुई प्रकाश शिंदे इनसे और कई सारी बातें इन्होंने साझा की है, हमें मैसेज भी भेजा है और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की है, जैसे कि ये जो हैं मिले थे एक्टर सुनील शेट्टी से और इनके बहुत बड़े फैन हैं, प्रशंसक हैं और कल सुनील शेट्टी जी का जन्मदिन है, तो बहुत सारी बातें इन्होंने साझा की है और साथ ही साथ अपना फ़ोटो भी भेजा है। बहुत अच्छा लगा देखकर प्रकाश जी आपका फ़ोटो। और इन्होंने ये भी लिखा है, यानी कई सारी बातों में से जो बात हमारे विषय से जुड़ी हुई थी वो ऐसी थी कि बेंगलुरु की नन्ही अकीरा के बारे में उन्होंने लिखा कि इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ उसने किया है, ये वाकई यानी काबिले तारीफ़ है और इसे हैट्स ऑफ कहते हैं। और इन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि डर के आगे जीत है, हाँ डर से निकल कर आगे बढ़ना भी चाहिए, तभी तो जीवन में कुछ बन पाएंगे। हाँ कुछ चीज़ों से डरना भी चाहिए, हार भी हो सकती है, फिर भी इससे उभरना आना चाहिए। और इन्होंने लिखा कि उन्हें जो है बाजीगर का डायलॉग याद आ रहा है इसी बात पर, लिखते हैं कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बाजीगर की बात ऐसी है ना कि ये एक स्ट्रैटेजिस्ट है बाजीगर, यानी कि कुछ हारना पड़ता है कुछ जीतने के लिए, उसका मतलब ये है कि एक स्ट्रैटेजी या प्लान का एक पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है कि भाई आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा, है ना, तभी आप वो चीज़ पाएंगे। और हार कर जीतने वाले को, यानी कि वो कोई चीज़ जीतने के लिए कुछ जो हार कर भी जीत जाता है वो बाजीगर होता है। तो ये बहुत ही गहरी बात है इन दो लाइनों में, हालांकि ये फिल्मी डायलॉग है लेकिन बात जो है वो बहुत गहरी है भाई। और इन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड के महान शख्सियत कलाकार सुनील शेट्टी साहब को डेडिकेट करना चाहते हैं गाना, हाल ही में मिलना हुआ और सौभाग्य ये प्राप्त हुआ और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद मेरी बात अय्याज चौधरी इनसे भी हुई और इन्होंने कहा कि वाकई कि पेरेंट्स का सहयोग कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे के, किसी भी इंसान के करियर के लिए। और बात हम लोगों ने चर्चा ये भी की कि भाई किस तरह कई सारे माता पिता होते हैं, बहुत कुछ करते हैं लेकिन बच्चे कुछ करना नहीं चाहते, भाई ऐसे भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि बस काश ऊपर वाला भगवान ऐसी जोड़ियां मिला देता, ऐसे बच्चों को ऐसे माता पिता से मिला देता, यानी करने वाले बच्चे और सहयोग देने वाले माता पिता, तो क्या ही बात होती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमें मैसेज आया है विजय महोबिया और पूरे परिवार का और इन्होंने गाने की फरमाइश की है। शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी भी हमसे जुड़ी हुई है। अब देखिए हमें हमारे साथ ग्राम दुल्हापुर मुरादाबाद यूपी से फरहान मोहम्मद फरहान, सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राजेंद्र परमार जी की भी यहाँ पर इनके भी मैसेजेस आए हुए हैं।

है, बस मैं देखने ही वाली हूँ कि क्या लिखते हैं वो। बहुत सारी अच्छी बातें ही इन्होंने लिखी है। तो लिखते हैं कि मन की चाल विहंग है, मन पल पल में अपने विचार बदलता है, मन और आत्मा का गांठ संबंध है, और मन अच्छे कर्म करवाता है और बुरे कर्म भी करवाता है, तो अपनी आत्मा कहे वो ही करना है। तो लिखते हैं संत सूफी बुले शाह जी को प्रणाम करते हुए, ये जो है मैं भी नाचू गाऊं ये गाना लिख रहे हैं। प्लस साथ में इन्होंने लिखा है मरने का डर रखो और जीने की आशा रखो, अच्छे कर्म करो। और लिखते हैं कि सूफी गीत जो है बहुत पसंद करते हैं और सुनना चाहेंगे, तो कोशिश रहेगी कि बिल्कुल ये ढूंढकर आपके लिए प्ले करूं। अशोक पाटिल जी वर्ली से हमें मैसेज करते हैं, और बाकी हमारे जो श्रोता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा दादर से मैसेज कर रहे हैं हमें, और दीपा पालकर जी की भी फरमाइश और मैसेजेस यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन्होंने लिखा है कि अकीरा को रियल, इसकी रियल कहानी है, बहुत स्फूर्ति देती है, और लिखती हैं 2 साल की उम्र में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, ये रियली बहुत बड़ी बात है। बच्ची माता पिता की वजह से, खेलों में उनके होने की वजह से भी उसे प्रोत्साहन मिला, और वाकई काबिले तारीफ रहा उसका काम। और लिखती है जिधर मुझे डर लगता है उधर मैं आगे नहीं बढ़ती, परिवार और दोस्त भी मुझे आगे बढ़ने को बोलते हैं तब भी मैं अपने डरपोक स्वभाव के कारण दूसरा कोई विकल्प ढूंढती हूँ। बिल्कुल दीपा जी, कभी कभी ये भी सही होता है कि डर के कारण जो एक डायरेक्ट अप्रोच ना करके हम कोई और अप्रोच के बारे में सोचते हैं। तो चलिए अब काफी समय हो चुका है तो आपको गानों की तरफ ले चलते हैं। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स। सबसे पहला गाना प्रकाश शिंदे जी का तुम दिल की धड़कन, फिर दुनिया में कितना गम है अय्याज चौधरी की फरमाइश, और उसके बाद जो है दीपा पालकर इनकी फरमाइश मैं प्ले करूंगी। बने रहें, सुनते रहें।

0: कभी लगता दूर है
1: ये
2: तो कभी लगता पास है।
3: रंगों में न जाने क्या बात है,
4: पल पल रंगते रंगते रंगते रंगते
2: दिल झूम उठा है अचानक ऐसे,
0: जैसे कोई हर वक्त दिल के पास है।
5: ये मजा रंगों का है, सुमधुर गीतों का है,
2: क्योंकि ये है आपका अपना
3: 107.1 FM रेनबो, दिल से
2: दिल तक।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और अभी इस समय हिट एंड हॉट चल रहा है जहां पर आपकी फरमाइशें मैं प्ले कर रही हूं, साथ ही साथ आपके दिल की बातें हमारे तमाम श्रोताओं के साथ भी साझा कर रही हूं। और जैसे कि मैंने कुछ वक्त पहले साझा किया था कि हमारे श्रोताओं के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे मैसेजेस हैं, तो संजय दर्शन जी ने भी हमें मैसेज किया था। उन्होंने लिखा कि नाम ऐसा है कि गुण जो है नाम के हिसाब से आता ही है, तो अगर नाम बच्ची का अकीरा है जिसका अर्थ है उज्जवल या चमकदार, बुद्धिमान या स्पष्ट होता है, तो ये गुण जो है आएगा ही। और जापान में लिखते हैं कि ये लोकप्रिय नाम है और संस्कृत संदर्भ इसका ये मिलता है कि सुंदर शक्ति या गरिमामय शक्ति ये भी माना जा सकता है। और सच में उसकी कहानी प्रेरणादायक है, सराहनीय है और उन्होंने धन्यवाद कहा है। आपका भी धन्यवाद संजय जी। और लिखते हैं कि दरअसल माँ बाप ही बच्चे को डराते हैं, अंधेरों से डराएंगे या किसी चीज से भी कि अरे ऐसा मत करना, वो मत करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लिखते हैं कि बच्चे तो बचपन से ही यानी कि मन में उनके भावना डर की डालनी नहीं चाहिए, इन्होंने लिखा है। लेकिन संजय जी आपकी बात भी सही है, कुछ चीज़ों के लिए डर नहीं डालना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुराफाते करते हैं, तो उनको थोड़ा कभी कभी माता पिता को डराना भी पड़ता है बच्चे की अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा फर्क जो है करके देना ही चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए। यशवंत आडमुठे जी से भी मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि वहाँ पर सोयाबीन की खेतों में है वो काम कर रहे हैं और वहाँ पर बारिश कम है, तो बोले अभी बारिश की जरूरत है और पूछ रहे थे कि मुंबई में कैसा है। मैंने कहा यहाँ पे भी बारिश जो है कम है। फिरोज इकनपुरिया, इन्होंने भी हमें मैसेज किया, कॉल भी किया, उनकी बातें मैं साझा करूंगी थोड़ी देर में। अभी मैं जीना नहीं ये गाना प्ले कर रही हूँ संजय दर्शन जी के लिए।

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो और अभी हिट एंड हॉट जारी है और आप सभी की फरमाइश ये मुझ तक पहुंच चुकी है, पर जैसे कि आप जानते हैं 8-9 गाने ही प्ले हो सकते हैं इस घंटे में। तो भाई अब जो है नामों की श्रृंखला और गानों का ये जो लिस्ट है, इसमें अगला नाम अगला गाना किसका है? देखिए, मुझे पंकज मोहर जी, इनका मैसेज भी आया, कॉल भी आया, कई सारी बातें इन्होंने साझा की और मुख्यतः इन्होंने ये कहा कि देखिए माँ बाप का सपोर्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। हर किसी बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट डेफिनेटली होता है, लेकिन उस टैलेंट के लिए माता पिता का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कही आपने और किसी भी गाने में शामिल करने की इन्होंने गुजारिश की है, तो धन्यवाद आपका समझने के लिए। और हमें मैसेज और कॉल दोनों आए हैं। यशवंत आडमुटे जी का जो मैंने आपको बताया, उनका गाना भी मैं प्ले करने वाली हूँ। प्रमोद चिंचोलकर जी ने भी मैसेज किया है, पल पल दिल के पास गाना ये सुनना चाहते हैं। और हमें अहमदाबाद से आकांक्षा सिन्हा, इन्होंने मैसेज किया है। फिरोज सिकनपुरिया, इन्होंने भी हमें मैसेज किया और इन्होंने लिखा कि भाई ये तो सुना था कि 12 साल के बच्चे जो है मोबाइल चलाना सीखते हैं, ये वो बाकी चीजें सीखते हैं तो तकरीबन उस उम्र की। अब ये बच्ची तो 2 साल के अंदर अंदर किक स्कूटर सीखे चलाना, तो ये तो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ बात है और ये तो करिश्मे की तरह है। तो अच्छा लगा ये जानकर और धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए, ऐसे इन्होंने लिखा है। अब देखिए हमें और भी श्रोताओं के मैसेजेस आए हैं और ओमकार काटकर पंढरपुर से हमें मैसेज लिखते हैं और बड़ा ही दिलचस्प इनका तरीका रहा बोलने का। इन्होंने लिखा कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने वो कहा था तो इन्होंने इसी को कोट करते हुए आगे लिखा कि वैसे ही गाना लगा दो मेरे लिए रंग फिल्म का, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। तो वाकई आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है इसकी तारीफ तो बनती है, तो धन्यवाद उसके लिए। और यहाँ पर मुझे विजेंद्र घाटोल जी का भी मैसेज आया है और विजेंद्र जी लगातार मैसेजेस कर रहे हैं इसलिए उनका मैसेज बहुत पीछे चला गया था, तो धन्यवाद आपने मैसेज किया है। कोशिश रहेगी कि आपका गाना प्ले हो, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 4 गाने क्यूड है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं अब प्ले करने वाली हूँ बहारो फूल बरसाओ, उसके बाद पल पल दिल के पास और फिर पतझड़ सावन बसंत बहार। ये फरमाइश जो है ये भी आई हुई है, बस मैं यही देखने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे कौन से श्रोता की ये फरमाइश है जो मैंने लिख ली थी, तो कुछ ही देर में आप सभी के साथ साझा करूँगी। फिलहाल बहरहाल 2 गाने सुन लीजिएगा, ये है बहारो फूल बरसाओ और पल पल दिल के पास। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

हिट एंड हॉट चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर। एक ही गाना जाने की गुंजाइश है, लेकिन अगर उसमें से समय रहा तो विजेंद्र घाटोल जी का जो है भेजा हुआ गाना, ये हम जरूर प्ले करेंगे। इन्होंने लिखा है, बहुत इंजॉय किया, कहानियां इंजॉय की, और जो है ये सुनना चाहते हैं कुछ गाने, नमक हलाल का पग घुंगरू। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी, हालांकि बहुत मुश्किल है। और अभी अभी जो मैंने आप सभी के लिए सिंदूर फिल्म का गाना प्ले किया था, ये यशवंत आडमुटे जी की फरमाइश थी, और उसके बाद मेरे प्यार का हिसाब ये आखिरी गाना है इस घंटे जो प्ले होने वाला है। और मुझे मुश्किल ही लग रहा है विजेंद्र जी कि आपके गाने के लिए कोई समय बचेगा ऐसा। और हमें जो तमाम श्रोताओं के मैसेजेस आए हैं उसमें से जो लोग हैं जिनका नाम लेना बाकी है, मैं बस साझा करना चाहती हूँ उनके नाम। हमें वैदेही का मैसेज आया था, बहुत बहुत धन्यवाद वैदेही, आप हमेशा

मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ये हमारे साथ बने हुए हैं और ये हैं पंजाब से। यहाँ पर स्वाति पांडे वाराणसी से हमारे साथ बनी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार ये भी बने हुए हैं और स्वर्ण सिंह और इनका पूरा परिवार हमारे साथ बना हुआ है। ये जिला फिरोजपुर पंजाब से हमसे जुड़े हैं। यहाँ पर मुझे मैसेज आया मंगेश जोशी जी का रोहा से, मुकेश कश्यप जी का मैसेज आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। तो ये तमाम श्रोता हमसे बने हुए थे, जुड़े हुए थे और भी लोग हैं। लालगिरी गोस्वामी जी हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, धन्यवाद आपका। और राजस्थान से श्रीगंगानगर से ये बने हुए हैं। मेयर अरोड़ा जी भी श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं। राजकुमार कुंभार जी हमारे साथ बने हुए सोलापुर से और अभिजीत गवाणकर जी भी बने हुए हैं उमरखेड़ महाराष्ट्र से। और आगे मैं देख रही हूँ राजेंद्र शर्मा जी बने हुए हैं यहाँ पर। प्रदीप अनंत कृष्णन जी का भी मैसेज आया है, मीना जी का मैसेज आया है अभी यहाँ, शुभदा जी का हमें मैसेज आया है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसे मैंने कहा था आकांक्षा जी भी जुड़ी हुई थी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आप सभी जानते हैं समय की सीमा है, वक्त की कमी है, तो इसलिए आपको छोड़े जा रही हूँ इस आखिरी गीत के साथ। मैं हूँ वैशाली, आप सभी से जो है अब 16 अगस्त और उसके बाद ही मुलाकात होगी, तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्यून इन कीजिएगा 107.1 FM रेनबो पर। और साथ ही साथ ठीक 2 बजे आप सुन सकेंगे दिल्ली से प्रसारित होने वाले मिड डे न्यूज़।

0: भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ है उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि CBI जांच करा दो और JSSC के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ED जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार

0: का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
5: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
6: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और हमारे तमाम कार्यक्रम का आस्वादन कीजिए। चलिए, 5:02 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लव यू जिंदगी। सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार।

सुरमई शाम। जी हाँ, अगर आप FM रेनबो से जुड़े हैं और रोज़ शाम को ये कार्यक्रम सुनते हैं तो वैसे भी आपकी शाम सुरमई होती ही है। वैसे जब सुरों की बात चलती है और उसे हम अगर ज़िंदगी के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं तो एक बात का एहसास ज़रूर होता है कि ये जो लय है, ये जो ताल है, ये सृष्टि के हर कण कण में बसा है और यही ताल, यही लय हमारी ज़िंदगी में भी है। हाँ, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी इसे बरकरार रखने की कोशिश हम में से हर कोई करता रहता है, दिन रात हर पल। और इसी के पीछे भागते भागते एक दिन हम थक जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये संघर्ष भी कोई बुरा नहीं था, इसमें भी अपना एक सुर था, अपनी एक ताल थी। और इसीलिए ज़िंदगी का ये गीत हम हमेशा गाते रहते हैं, उस सुर को, उस ताल को संघर्ष के साथ मेंटेन रखने की हम कोशिश करते हैं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।

0: अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

दोस्तों कहते हैं कि यदि जीवन में कुछ पाना है, सफल बनना है, तो संघर्ष अटल है। और ये संघर्ष करने के लिए हमें दिशा निश्चित करनी होगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि आपको किस लिए संघर्ष करना है, पाना क्या है आपको। कभी कभी तो ऐसा होता है जिंदगी में कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारी मंजिल कहाँ है, हम किस लिए संघर्ष करें। लेकिन देर सवेर जिंदगी रास्ता दिखाई देती है और फिर इस संघर्ष के नए मायने अपने आप समझ में आते हैं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

5:39 हो रहे हैं। लव यू जिंदगी, आप माया के साथ सुन रहे हैं। बात जिंदगी की हो रही है, संघर्ष की हो रही है। संघर्ष तो भैया अटल है। एक अंधेरी स्टेशन पे, अब पता नहीं, मैं बहुत दिनों से गई नहीं, अंधेरी स्टेशन पे जहाँ से चर्च गेट फास्ट ट्रेन छूटती हैं, वहाँ पे एक बूढ़ा, बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं, अधेड़ आदमी बहुत खूबसूरत बंसरी बजाया करता था। और बिल्कुल लास्ट टूवर्ड्स विरार साइड का जो लेडीज़ हैं वहाँ का जो पदचारी पुल है, वहाँ पर वो बैठा करता था। वहाँ पे खम

हुआ है। वहां पे वो बैठा करता था और बहुत खूबसूरत बंसरी बजाया करता था। लोग जब ट्रेन के लिए वेट किया करते थे तो वो हमेशा बांसुरी बजाकर उन्हें उनको लुभाया करता था, उनका मनोरंजन किया करता था। और उस वक्त ऐसे लगा कि जैसे स्ट्रेस बस्टर सी होती है उसकी वो बांसुरी, उस आपाधापी के भाग दौड़ वाले भाले वक्त में। बहुत सारे लोगों ने उससे बातें की, करते रहते थे लोग हमेशा उससे बातें। तो पेट भरने के लिए बहुत खूबसूरत सा अंदाज उसने अपनाया था। संघर्ष वहाँ पर भी अटल है, लेकिन इस संघर्ष को खूबसूरत कैसे बनाया जाए भाई, ये अपने हाथ में ज़रूर होता है। चलते चलते हमारे संघर्ष से किसी का अगर भला होता है तो किसी का क्या जाएगा, आनंद तो वैसे ही मिलना ही है। संघर्ष में ये आनंद वाली बात सचमुच बहुत खूबसूरत है ना।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

दोस्तों, जीवन में संघर्ष हम अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपना जीवन संवारने के लिए तो ज़रूर करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों के सुख के लिए, देश के लिए जब संघर्ष होता है तो वो संघर्ष एक अलग ही ऊंचाई पर होता है। आज जब आ रही थी आपसे मिलने तो बहुत सारे स्टेशंस पर देशभक्ति पर गीत सुनाई दिए और एक अलग ही जज्बा मन में जाग उठा। ख्याल मन में आया

कार्यक्रम समाप्ति की ओर। ठीक 6:05 पर आप समाचार सुनेंगे और उसके पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम अंदाज़े बयां। सुनते रहें FM रेनबो माया के साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। शाम के 6:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंदाजे बयां। सभी श्रोताओं को माया का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

शाम के 6:40 हो रहे हैं और अंदाजी बयां आप सुन रहे हैं माया के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 7:10 का वक्त होता है हम तुम कार्यक्रम का, जिसमें आपकी फरमाइशें पूरी होती हैं, आप अपने पसंदीदा गीत सुनते हैं। तो चलिए, इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए क्या करना होता है हम आपको बता देते हैं। तो हमारे इस हम तुम कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपने पसंदीदा गीत, जिसके लिए आपको करना ये होता है कि हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर आपको व्हाट्सएप कर मैसेज करना है और मैसेज में ये लिखना है, लिखना क्या है, आपको अपने जो गीत आपको सुनना है उसके पसंदीदा, वो गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम और हो सके तो आप कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी हमें व्हाट्सएप करनी है। किस नंबर पर? इस नंबर पर 8657661

8061। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फिर से दोहराए देते हैं 8657661071। तो जल्दी से जल्दी अपना फ़ोन उठाइए और फटाफट से हमें मैसेज कीजिए और सुनिए आपके पसंदीदा गीत हम तुम कार्यक्रम में शाम को 7:10 पर।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
0: 8700001424।
3: गजल शेख आदम अबू वाले की लिखी हुई है।

आशा भोसले के गाए हुए इस गज़ल के साथ ही हमारा आज का अंदाज़े बयां कार्यक्रम बस यहीं तक ही। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे मराठी बातमियां और तत्पश्चात हम तुम कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। सुनते रहें FM रेनबो RJ माया के साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं। शाम के 7:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम तुम। सभी श्रोताओं को माया का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपके फरमाइशों का कार्यक्रम होता है, आपका पसंदीदा कार्यक्रम होता है। और थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपको इस कार्यक्रम में शरीक होना है, सम्मिलित होना है, पार्टिसिपेट करना है, तो क्या करना होगा पहले ही मैंने बता दिया है। लेकिन एक बार फिर से जो श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनके लिए एक बार फिर से हम प्रोसेस दोहराए देते हैं। आपको करना ये है कि व्हाट्सएप नंबर जो हम आपको देने वाले हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपके पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, पॉसिबल हो तो आप कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी व्हाट्सएप हमें करनी है 8657661071 इस नंबर पर। नंबर फिर से दोहराए देते हैं 8657661।

7 6 6 1 0 7 1, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप झटपट से अपनी जो फरमाइश है वो ज़रूर लिखकर भेज दीजिएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पास फरमाइशें आना शुरू हो चुका है। सबसे पहली फरमाइश है इंदौर से अजय साखरे जी की, दुश्मन फिल्म का लता मंगेशकर उदित नारायण का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहते हैं।

हमतम कार्यक्रम आपका बहुत पसंदीदा कार्यक्रम है और हम पर हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें पहुंचना शुरू हो चुका है। अगली फरमाइश हमें पहुंची मिली है दीपा पालकर जी से। दिल्ली सिक्स फिल्म से रेखा भारद्वाज, सुजाता मजुमदार और साथियों का गाया हुआ गेंदा फूल, ये गीत आप सुनना चाहती हैं।

अगली फरमाइश है अकोला से प्रमोद चिंचोलकर जी की। आपको सुनना है जानी दुश्मन फिल्म से मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे आज का अर्जुन फिल्म से लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और साथियों का गाया हुआ ये गीत, और इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई थी श्रीधरन बालचंद्रन जी ने। इसके बाद जो फरमाइश हम तक पहुंची है पंकज मोहड़ जी ने अमरावती से, और वो ये कहते हैं कि ये जो गीत है आज का अर्जुन फिल्म का है, और आज ही के दिन यानी 10 अगस्त 1990 को अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बहुत अजीम कलाकार इसमें थे, ऐसी ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और वो सुनना चाहते हैं, पंकज मोहड़ जी सुनना चाहते हैं सरगम फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत लता दीदी और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बेहतरीन ऑर्केस्ट्रेशन, बहुत ही खूबसूरत सा गीत था ये। इसके बाद जो फरमाइश हम तक पहुंची है वो संजय पाटिल जी से हैं। जहरीला इंसान फिल्म से किशोर दा का गाया हुआ ये गीत आप सुनना चाहते हैं।

7:48 हो रहे हैं दोस्तों, कार्यक्रम समाप्ति की ओर। बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंची है और खे रहे हमें कि हम पूरी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक घंटे का प्रोग्राम होता है। बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें कार्यक्रम में हम शरीक कर ले। अब कार्यक्रम में अंतिम दो फरमाइशें हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसके बाद आप सुनेंगे हम आपके हैं कौन फिल्म से पहला पहला प्यार है, SB बालासुब्रमण्यम और साथियों का गाया हुआ ये गीत। ये फरमाइश फिरोज सिंगापुरिया जी ने हम तक भेजी है। और इसके पश्चात रसिक मात्रे जी अलीबाग से फरमाइश कर रहे हैं, मिशन कश्मीर फिल्म से रिंद पोशीमाल शंकर महादेवन और साथियों का गाया हुआ गीत सुनने की। तो चलिए ये कार्यक्रम की अंतिम दो फरमाइशें आप तक हम पहुंचाते हैं और इसी के साथ माया आपसे विदा लेगी। इसके पश्चात आप सुनेंगे कार्यक्रम रॉक विद जॉक और अब माया आपसे विदा लेती है। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और

0: प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
6: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
7: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खेयांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
8: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च

0: किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी SP पारस राणा और SP ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी JSSC CGL परीक्षा की स्वतंत्र CBI जांच और JPSC JSSC परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए CBI और ED जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
2: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
3: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समा

0: समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान मिथक तोड़ना जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नृत्य निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during Assembly March in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarterfinals are scrapped. India drawn in the men's and women's Pool D. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with the Rajya Sabha returning it to the Lok Sabha after discussions. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on the 5th of June this year. Replying to the discussion, Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been

0: I've spent my life looking for you, finding my way wasn't easy.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

0: रामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को UPI पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तेरे बदन की खलाओं में आँख खुलती है, तेरे बदन की खलाओं में आँख खुलती है, हवा के जिस्म से जब जब लपट के सोता हूँ। ये जो अल्फाज आपने सुने ये अमीर इमाम साहब के हैं, भारत के जाने माने शायर हैं, ये गज़लकार हैं, ये अनूठे अंदाज के लिए बड़े ख़ास इनके कलम से निकले हुए अल्फाजों को समझा जाता है, माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के संभल में जन्म हुआ था उनका 1984 में। और ऐसी पता नहीं कितनी ही इनके कलम से निकली हुई नज़में हैं जो कि एक अलग मकाम रखती हैं और एक अलग जगह रखती हैं। प्रोग्राम आपका वही है रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर। क्यों ना अपनी खूबी एक किस्मत पे इतराती हवा, क्यों ना अपनी खूबी एक किस्मत पे इतराती हवा, फूल जैसे एक बदन को छूकर आई थी हवा।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: जी हाँ, प्रोग्राम आपका चल रहा रंगी महफिल। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हमारे देश में बेहतरीन शायरों की और उनके अल्फाजों की, उनके कलम से निकले हुए चंद जो नज़में थी ना, उनका कोई जवाब नहीं है। चाहे अभी की बात कर लीजिए, पहले की बात कर लीजिए, मेरे ताकि मीर साहब एक तरीके से अगर देखा जाए तो 17वीं शताब्दी के शायर। आगरा में जन्म हुआ था इनका और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। भारत के बहुत ही अच्छे शायरों में इनकी गिनती होती है। इनके लिखी हुई नज़में लोगों को भी काफ़ी पसंद आती हैं और उन्हीं नज़मों में से एक पूरी गज़ल है, गज़ल के अशआर हैं ये। सोचा आपके लिए ज़रा पढ़ दें इनको। हस्ती अपनी हबाब किसी है, हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। नाजुकू उसके लबों की क्या कहिए, नाजुकू उसके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, या कि औकात ख्वाब किसी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब खराब सी है। नुक्ता खाल में तेरा अब्रू बैतक इंतखाब किसी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसे खाना खराब किसी है। आतिश गम में दिल भुना शायद, आतिश गम में दिल भुना शायद, देर से वो कबाब किसी है। देखिए अब्र की तरह अब के मेरे चश्मे पर आप किसी हैं। मेरुन नीमबाज आँखों में, मेरुन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब से है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

रहजन नहीं तो फिर क्या है? आंख रहजन नहीं तो फिर क्या है? लूट लेती है एक साथ काफिला दिल का।

क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई, मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम। क्यों ये कहता है दिल? इस मुलाकात में आपके साथ रहेंगे संतोष राव, माला नेगी, राजेश कुमार, प्रवीण कुमार, वीर दमन और ओपी राठौर भी। क्यों ये कहता है दिल? 31 दिसंबर की रात उमंग 2026 में न्यू ईयर पार्टी सिर्फ FM रेनबो पर। न्यू ईयर स्पेशल उमंग 2026 रात 9 बजे से नए साल तक सिर्फ FM।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। चलिए इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा अपना और जगजीत साहब की आवाज़ के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको, और सुनते रहिए आप अपना रेडियो स्टेशन AIRFM रेनबो इंडिया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। समय हुआ है रात्रि के 12 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिससे पश्चिमी कोलंबिया के शहरों में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतों के ढहने की खबर है।

भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल है। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

रात्रि के 12:03 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक जीरो आर शो में, जिसमें आप गाने सुनेंगे, वो जो कुछ गाने आप भूल चुके हैं उन गानों को याद करेंगे और कुछ गाने नए गाने होंगे, तो उन सभी गानों का आप मजा लीजिए और ऐसे ही गानों की दुनिया में खो जाइए। तो स्टार्टिंग करते हैं विशाल भारद्वाज की आवाज में फ्रॉम द मूवी सात खून माफ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

कला मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं जीरो आर शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक और रात के 12:54 हो चुके हैं और अब इस शो का टाइम यहीं पूरा होता है और 1 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार। लेकिन अभी के लिए रोमियो मूवी से ये गाना सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने के वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिससे पश्चिमी कोलंबिया के शहरों में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतों के ढहने की खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहानी रात।

सुहानी रात। कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना उदित नारायण की आवाज में, फिल्म सिर्फ तुम से। आइए अब सुनते हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म से अगला गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

सुहानी रात कार्यक्रम जारी है आकाशवाणी के रेनबो चैनल से। आइए अब सुनते हैं गुना फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। गीत लिखा है प्रवीण भारद्वाज ने और संगीत दिया है आनंद राज।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद

0: ज्यादा के लोगों का फिक्र आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। कार्यक्रम जारी है सुहानी रात। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में अब ये गीत। फिल्म है साजन चले ससुराल। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।

राज फिल्म से आइए आप सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये अगला गीत। समीर के लिखे बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत।

और अब पेश है सुहानी रात कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, कभी खुशी कभी गम फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम की आवाजों में।

रात्रि के 2 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं AIRFM रेनबो चैनल और अब सुनिए मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। यूक्रेन ने कल मध्य रूस के तातारस्तान इलाके में निज़्नेकामस्क के पेट्रोलियम हब पर हमला किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और 75 लोगों के घायल होने की खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और FIH हॉकी विश्व कप 2006 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल हैं। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 2:53 और 53 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भुलाए ना बने, जिसमें सॉफ्ट मेलोडियस सॉन्ग्स का आप मजा लेंगे, वो भी नॉन स्टॉप। तो अभी शुरुआत करते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में इस गाने के साथ फ्रॉम द मूवी सत्या। तो ऐसे ही गानों की लड़ी चलती रहेगी और आप नॉन स्टॉप गानों का मजा लीजिए।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

मेरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों,

जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 2:39 और आप सुन रहे हैं भुलाई ना बने शो, जिसमें आप सुन रहे हैं वो गाने जो आप किसी टाइम पे भूल चुके थे और बहुत ज्यादा भी सुनते थे, लेकिन उन गानों को दोबारा से रिमाइंड करने का टाइम आ चुका है और उन गानों को एंजॉय कीजिए। चित्रा की आवाज में फ्रॉम द मूवी अशोका।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 2:50 और आप सुन रहे हैं भुलाई ना बने शो, जिसमें वो गानों का आप मजा ले रहे हैं जो आप किसी टाइम पर सुनते थे लेकिन अब भूल चुके हैं। उन गानों को दोबारा से रिमाइंड करने का टाइम आ चुका है। नॉनस्टॉप गाने आप एंजॉय कीजिए और ये गाना है फ्रॉम द मूवी अनजान अनजानी।

आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर भोर आप सुन रहे हैं भुलाई ना बने शो, रात के 2:55 और अब ये शो ऑलमोस्ट एंड अप के लिए आ चुका है। तो इस शो का ये लास्ट गाना है, लेकिन नॉन स्टॉप गाने चलते रहेंगे और दोपहर 3 और क्षमा कीजिए अभी यानी थोड़ी देर में आधी रात को 3 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई है और 87 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

मिडनाइट मेलोडीज कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आपने सुना शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म था चांदनी चौक टू चाइना। आइए अब सुनते हैं हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

इरशाद कामिल के लिखे बोलों को अभी आप सुन रहे थे अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में, फिल्म भारत से। विशाल शेखर का संगीत था।

टू स्टेट्स फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा को। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल थे और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: एफएम रेनबो चैनल पर कार्यक्रम जारी रहेगा मिडनाइट मेलोडीज इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज में।

आइए सुनते हैं तेरा सरूर टू फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन को। गीत लिखा है समीर अंजान ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अरिजीत सिंह, नीति मोहन और सुजेन डिमेलो की आवाजों में अभी आपने सुना ये गीत। आइए अब सुनते हैं रंगून फिल्म से एक बार फिर से अरिजीत सिंह की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ गीत और विशाल भारद्वाज का दिया हुआ संगीत।

अक्षय त्रिपाठी का लिखा हुआ गीत था और विशाल मिश्रा का संगीत। कार्यक्रम जारी है मिडनाइट मेलोडीज़।

आर्को ब्रावो मुखर्जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत रुस्तम फिल्म से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत अरिजीत सिंह, अमाल मलिक और तुलसी कुमार की आवाज़ों में फिल्म एयरलिफ्ट से।

सुबह के 4 बज चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोज

कर सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिल गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन होगा। पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई है और 87 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल है। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुबह के 4:02 और 45 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और ये टाइम होता है नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक का। और अब शुरू होता है सारे गामा, जिसमें आप बिना रुके गानों को सुनेंगे एक के बाद एक। तो अभी शुरुआत करते हैं फिलहाल मूवी से आशा भोसले जी की आवाज में इस गाने के साथ, और इस गाने के बाद ही एक के बाद एक गाने की झड़ी शुरू हो जाएगी। तो बस आप ऐसे गानों का मजा लेते रहिए और गानों की दुनिया में खो जाइए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।